सदा भला सरबत वाला मंगदा मनोरथी जिंदगानी दा नाम जगते हमेशा रहिंदा गूंजदा सूर में भगत दानी दा नाम जगते हमेशा

0: सजा जलावत नहीं दी होई सिखा नू मेरे राज विच था नहीं कोई सिखा नू
1: जावो इस देश चो भजाओ सिख नू जावो इस देश चो भजाओ सिख नू जेड़ा दिख फड़ के ले आओ सिख नू

तुमरी कृपा में कोई ना जानी तुमरा उचे ते उचा सगल समग्री तुमरा सूतर तुमते हो एसो तुमरी गाता मेता नानक दास सदा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू समराओ श्री हर आए। श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठा सब दुख जाई तेग बहादुर सिमरै घर नौन दे आवै ताई सब थाई होई सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां चिन्हा नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तनहा प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे। जिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हे सीह दते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुबासां संग निभाही तनहा दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे। प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी कौ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग फतह बिरद की पैच पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय

हर जानहु आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, सो कह टल गुर सेविए, एहनिस सहज सुपाए, दर्शन परसे ऐ गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अर्शों कुर्सों चट्टी है।

इस तिल ना तमाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला दूजा। किस ही कोई कोए, मन निमाणी एक तू, क्यों ना मरीजै रोए, जा लग चित ना आवही। अज दा ए पावन श्री मुख वाक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 791 तों आरंभ होके 792 ते संपूर्ण हुंदा है। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक ओ

जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हुसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस स्याणपा लख होहे ता इक न चलै नाल

कोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहु नानक विगसै वे परवाहु साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार आखे मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मुहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला।

हो। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछुताए।

हो। तीर्थ ताप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान, सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्ताथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुती माह हो कवन, जित होआ आकार। वेल न पाईआ पंडती, जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादिया, जे लिखन लेख कुरान। थित वार न जोगी जाने, रुत माह हो न कोई, जा करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई। किव करे आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण सब को आखै, एक दू एक सियाना। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै, नानक जे को आपो जाने, अगै गया ना सोहै। पाताला पाताल लख, आगासा आगास, ओड़क ओड़क भाल थके, वेद कहन एक बात। सहस अठारह कहन कतेबा,

दास हैं, तंध हैं, बंध हैं, अपगत हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलेख हैं, अदेख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटा हैं, अगा हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अटा हैं, अगा हैं, संभ हैं, अगंभ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंद त्व प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते, परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे अना निर्बाध विपूते, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे, न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात, निरसागं श्रीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती छंद त्वा प्रसाद, के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमें सुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चिराग हैं, के कामल करीम हैं, के राज करीम हैं, के रोजी देहंद हैं, के राज करहंद हैं, करीमुल कमाल हैं, के सुनल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, गरीबुल नवाज हैं, हरीफुल सिकन हैं, हरासुल फकन हैं, कलंकं प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजायक रहीम हैं, समस्तुल जुबां हैं, के साहिब किरा हैं, के नरकं प्रणास हैं, बहस्तुल निवास हैं, के सर्वुल गवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परं परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेशुल अलेख हैं, हमेशुल अभेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, के जुरत जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के मितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो विभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग हैं, के अमितो अपंग हैं, मदपार छंद त्व प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुण गन मुदाम, अरबर अगंज हर नर प्रपंज, अनगन प्रणाम मुन मन सलाम, हर नर अखंड भर नर अमंड, अनुभव अनास मुन मन प्रकाश, गुण गन प्रणाम जल थल मुदाम, अनछिज अंग आसन भंग, उपमा अपार गतमित उदार, जल थल अमंड दिस विस अपंड, जल थल महंत दिस विस बेअंत, अनुभव अनास त्रित तर तुरास, आजान बाहु एक सदाहु, ओंकार आद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अनछिज गात आजिज ना बात, अनझंज गात अनरंज बात, अन टुट भंडार अन ठट अपार, अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म, अनब्रण अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंद त्व प्रसाद, करुणालय है, रकालय है, खलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास्य है, सर्व नास्य है, करुणाकर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मांड से खलखंड से परते पर हैं, करुणा कर हैं, अजपा जप हैं, अथप्पा थप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं, अमृता अमृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, तरणी त्रित हैं, अमतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता अमृत हैं, नरनायक हैं, खलकायक हैं, विश्वंबर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं, पाप पंजन हैं, रगंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हरता हर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे,
नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो ब्रिंद ब्रिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अच्छरी छंद अजय अलय अपै अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज पंज लख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम काम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म अपरम अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विपूते समस्तुल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विपूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विपूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग क्रीमल रहीमे चतर जगर वर्ती चतर जगर भुगते स्वयंभव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विपूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विपूते एको ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वा प्रसाद सुइये पाए श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिर ओ कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली विद न्यावत सीस ना जात बिचारे एते पए तो कहां पए भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब स्वचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख है माते शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सुनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारे सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते मतंगन मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे
साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र नराध पजौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सची पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न दे तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बाक ध्यान लगायो नहात फिरे लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज तरियो सिर काहू ले लेंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पछाह को सीस निवायो को भुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो को भुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवि उबाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दैर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोर परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जोबर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिय हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तो जजू करिय और अच्छा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाये प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दास कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन बजायो आदि अंते कै अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा करता रा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा
ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ਅੰਡਜ ਜੇ ਰਜ ਸੇਤ ਜਕੀਨੀ ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬੋਹਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ਸਿਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ।

हो बचाई। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी, सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख दे लेहो बचाई।

इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वस्या पूर्व लिखिया पाया। कह नानकहु शरीर प्रवान हुआ जिन सत गुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जोत तरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया। एहो वेस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझया जा वेखा हर एक है, हर बनवर ना कोई। कह नानके नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिव दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो सच सुनने नो पठाए, सच सुनने नो पठाए शरीर लाए। सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया, हो रसना रस समाणी सच अलख बड़ाणी ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, सच सुनने नो पठाए हर

हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख

गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द में।

अम्या दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख स

परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान भजन परंपरा गुरुदेव करता सब पार।

सत्य ब्रह्मण सत्य तेरे लो सत्य आकार सत्य तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे अख लाख करोड़ सच्चे सब प्राण सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच

0: आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे साचे साहेबा क्या नहीं करते रे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो कर सांत सुख मन आए बसया जने इच्छा सब बुझाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो पे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे
1: पंच शब्द ते घर सुभागा।

नहीं तू अंत सखाई, जो तेरी शरणागति तिन लहे चढ़ाई। नानक वे परवाहो है तिस तिल ना तमाई, जो तेरी शरणागति तिन लहे चढ़ाई। नानक वे परवाहो है तिस तिल ना तमाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दी जागत जोत, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोद अंदर सुभायमान, गुरु सवारी साध संगत जी आप जी अमृत वेले तो दीवाना दी हाजरी भर के लाहे प्राप्त कर रहे हो। लड़ीवार गुरबाणी दी कथा विचार आप जी ने बहुत ही सत्कारयोग पंथ प्रसिद्ध विद्वान ज्ञानी प्रितपाल सिंह जी पटियाले वालियां पासों सरवण कीती है। ज्ञानी जी होरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। पिछला पूरा महीना मई दा महीना ज्ञानी जी ने दोनों वक्त आप संगत दी सेवा विच हाजरी भरी है। सो दो दिन इन्हां दी हाजरी होर है, सो इसे तरह आप जी लाहे प्राप्त करो। सो कदे कदे सबब बनते ने, काफ़ी देर बाद ज्ञानी जी आप संगत दे दीदार करन लई इत्थे पहुंचे ने। सो सतगुरु कृपा करन इन्हां दी चढ़दी कला लई अरदास है। हुण बेनती है, समा होया है कीर्तन दा। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई शिंदरपाल सिंह जी माही पटियाले वाले लगभग दो महीने तो आप संगत दे दीदार कर रहे सन। भावें भाई साहब होरी पक्के तौर ते कनेडा दे वसनीक ने, पर कीर्तन दे नाल प्यार है, संगत दा जिहड़ा प्यार है सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश अनुसार वह आप संगत की सेवा करने लई पहुंचे। उन्हां दा भी विशेष तौर पर धन्नवाद है। उन्हां दीआं भी एक दो हाजरियां होर ने, सो नवे जथिया ने हाजरियां अगले महीने भरनिया ने। सतगुरु कृपा करन इन्हां दी चढ़दी कला लई अरदास करदे हाँ। बड़े प्यारे, बड़े सुरीले, सुलझे हुए खानदानी कीर्तनियां ने, क्योंकि इन्हां दा परिवार पुश्त दर पुश्त गुरु के इस महान बख्शिश नूं संभाल रहा है। सो आओ भाई शिंदरपाल सिंह जी पटियाले वालियां पासों कीरतन सरवण करिए जी। होइयां बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां लई खिमा जाचना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जी सलोक महला दूजा किस ही कोई कोई मांझ निमाणी एक तू क्यों ना मरीजै रोए जा लग चित ना आवही किस ही कोई कोई मांझ निमाणी एक तू क्यों ना मरीजै रोए जा लग चित ना आवही महला दूजा जा सुख ता शहरावियो दुख भी समालोए नानक कह सियाणिया इं कंत मिलावा होए पौड़ी हों क्या सालाही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई नानक वे परवाहु है तिस तिल ना तमाई जो तेरी शरणागति

तिस तिल नात माई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जिन्हां दे पावन पवित्र चरणां अंदर आनंद कारज की आरंभता की अरदास हुई, गुरु साहिब जी ने हुक्मनामा बख्शिश किया। हुण भाई साहिब जी पल्ले का शब्द पढ़नगे, सो बेनती है बेटी दे परिवार नूं, ओ बेटी नूं बेटे दा पल्ला फड़ाउण, उस तों बाद फिर लावां दा

परवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो। हार पहलड़ी लाव परवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम तियावो, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराधो, सब किल विख पाप गवाया। सहज आनंद हुआ वड भागी, मन हर हर मीठा लाया। जन कह नानक लाव पहली, आरंभ काज रचाया।

मन चौ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर धुन उपजे हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै

0: दाता इस जग दा मालिक सब दा राखा दे प्रतपालक
1: ओ रहमत कर दियो सब दे घर विच होए सुखां दा वास
0: कर दियो कारज रास वाहे गुरु कर दियो कारज।

तुम है छाड कोई अवर न त्याऊ, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख है हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है।

सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन।

कहूं सिमट पयो शंकर इकट्ठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तो

कृपा दृष्ट तन जाहि निहरहु ताके ताप तनक मह हरहु रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह।

सुकह टल गुर सेवियहन सहज सुभाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम।